या संजी ताबी जो या यहाँ सेमचिन दिला यू गोपुर खोया यहाँ खामसम खोरबा यहाँ तोट खोया यहाँ कक्षम जीव यहाँ लंड खोया यहाँ दोनी जैसा यहाँ सिंबर खोया यहाँ खाँच सेमचिन यहाँ थामचिल कनाया यहाँ शर्म दोपी यहाँ साला गोलया यहाँ डे सिमचिल यहाँ थामचिल कनाया यहाँ दे गोत यहाँ खोया यहाँ निर्गन मोलम यहाँ डपर खोया यहाँ नामला निर्दा यहाँ कारसम खरया या निर्दार कारसम यहाँ टासी खोया तावार नम यहाँ का चिर या या निर्द चार्तर यहाँ टासी सोया या सालार से तो यहाँ लो तो मनाया या डट मन भी यहाँ टासी सोया यहाँ टासी नाम का यहाँ छाप चिर जिया या टासी आवानो यहाँ कंवर खोया यहाँ टासी साज यहाँ छापर खोया यार दस में पी यहाँ टासी खोया या थिर रोल यहाँ जो नमया यहाँ दत्त गलोपी यहाँ टासी खोया या मारू थानी यहाँ छोपर खोया यहाँ ताम्बी जोनी यहाँ टासी खोया यहाँ गेमल दिल यहाँ साचा चेर गिप चार भी यहाँ टासी खोया या जैफल शासम यहाँ तारवर खोया यहाँ वो यल्ला दिर चल यहाँ जो भी नेया या तेर गो थाम चल यहाँ सीनी सया ताख तेर यहाँ वोला यहाँ सात सोया या थानुर थाम चल यहाँ का यहाँ तन नमया ताख ची च माली यहाँ मे पाएया यहाँ थाम चल वोला यहाँ तारवर खोया या साचन रजल यहाँ जन तनाया कगजब जिल निर्दा यहाँ जिन तलाया ताख सो यहाँ छावी यहाँ अगडा यहाँ तराया या थाट कनला यहाँ छाप चिर चिया या कंथन नाम खा यहाँ छाप तलंदया या खामसम कनला यहाँ छापर खोया यहाँ खामसम खुरबा यहाँ तोट खोया ये कंत टासी यहाँ गेद खोया या देश चिल ख्वाम जुर यहाँ टासी खोया या निर्गिन सांबा यहाँ जिंत डबया या छेर नामल यहाँ टासी खोया यहाँ देला गोपी यहाँ टासी सोया या दिन सिगंड पी यहाँ मरगन गेया या मोल टासी यहाँ जो पाजन या यहाँ ते ते तिब जन यहाँ डब चिर चिया अलग कोना न्याला यहाँ छोपा बलया यहाँ मा को गलला यहाँ देवासे चेखुन रोसा छर्गिन गलत लनु छे सङछिन जाओ ग तरनि मो देलगरा खसिर गुरमो गनङे लासिग दाफला सेबजिक यं
tōng tsē chē rā tārā gā nā, kwa dō nā rjē kā yā, xēr kā pā tā rā tārā mbū, ar gāb dā tū tū gā ngā nē, trip chīn khuā tī nā mā yā, wā pā tān gā tā tē gā nā yā, pō gā dā mā rā, gā lōn chīn tā lūn dā, tsān tā lā xīm lā yā, xō rī chē nō mbā gā nā yā, ndī rā gāb sā ndā mā rā khām bā, ar gāb dī rā sā ngā tāg, chīn dā bā rā rjā sē, Aranda ra besi namji, ardawa khsum zhig, shig chunga dhano go toka chiri. Thamji go sema zong zidi, shing yil tala songi. Ardawa rjik nima, shtikhra yu piti, sanchina jawo go kawawi. Gajafla go kwalan rjata, khonchin thamji go chagdig yuko shi. Ardinkur chenpo nyekho shtakchi yu no to, Lōngchū jīngu tāmchī gu, ār ngī yu gā līnggō zīni. Kwar chūngā jībchī, ār jīnur jīyu tāmchī gu yāng tāstārā līnggō, āgā ur jīmbā tōngchī. Tēmān gāmaq pūg jāmni, gālāng gā shēyir gā shīni, yīgī dī tī tāmchī gu tī gā nān. Shīng gā gā lōngchīn dā tāntir yā gā, shīng gā gu yīg tāmu gā nā yā gā, ār dē khun dā tōng khun. ar jia khun da chi khun nam la yige qalang kir ke kwa tim ta gdigi tham chi ko tang la ni ni ngom bar tal nzam la sang chin je wo ge ta pi long da na ar da tan de sin thira ar je la ma ji wo no ge sla ga la ra ga nyen ar dib ji tham chi ko ta rong sta chi go no ying na xin jang ma nyen ti wa ta arang lang ge sa ni arang lang ge sem ta ga na la ho wa ārāngāngā sāgā sābchī tāndā yōngjī chētā rādā sōng mārāngā thāmchī kōn tāpgō xōngi gā wāb nū chē chōrjī khōngā lōg sō zīni thāchīn thāmchī kō lāchīn dā ngā gādīni tāngīn zīn chē sārgō gā nāmgō shūg zhīgā rādālīm thāmchī kō chālī dā yīnā lī hlāmo yīn zīni khuā kīlīni sāngchīna jāwō tā tū khintā jīni chorji la xir go mura takka gna. Si chung gajab la sebji kiyang, ardik chiu khamba ra, xiri nyimbam tawig. Sa jang dama ra, arjia si tigrim bimir tamchi ko. Gamaru zantang, gamukun siru ganyan ki gamag. Ngombu gali yi ganyamag, nik urdik ganyamag. Tamchi kor kini, ardilgo tamchi ko tambo chopar shu zindi kwa wabtang zi. Dama la khargo ga, ndanlaba bab, nyamba ma lorgo gandanlaba yoz, khamba nabgo gandanlam, ajyasi shiang gandanlam. Khun namba zhiga, yedam laga ngagdi zhigdi, shiag samga shcharang tong khanur kapsa, khun olonchin zhiga ndanta, qolo ngagni, ndama ga, ghalaga stendong hongbo ta, khargo nekhchik nzirno ga, arjilam ta chatang zhig. Nyambam ga, ganyan ga shtendong sero ta, lorgo ni xichin zirna ga, arjilam ta taga chattang zi. Khamba ga tsang ga shtendong ga maro ta, nabgo ni mara zinu, yang ta ga arjilam chattang zi. Rjasi tigra member ga, ndang ga shtendong nako ta, shanggo ni mara zinu ga, ardalum zhio ti, ardego zhio ti dhanu tse, ārda nāk gā rjīg jō gā pīlam tā nāk hōng sē nāng nū dām nīh kā tīg tā thāla lā yō tīr kā ār gō tēn zīr mā tāg tā ār gō thām chī kō mē pār chārī tā nī ārda dōn thām chī kū tūn dhrab tā sām nī shir dōg jām nī tā gā sāng chī nā jā wā rā tōr jī tā ār gāb dīh sām gō gā dhrab pā tū nī khuār gul dhrab chīn thām chī kō nyer shab gā sōng thām chī kō dī nī Sanzi ma changa menudzi, lapsang pe kono ti tamchi koga, kaso ga larja ga gada ga namsa kono ti, namka tamchi ko njiamsunikar. Stalam latuk tamchi ko, chirchung soma ra karsho ka, lagla ga nyasam, ammaksuk tamchi ko khchin tartan tawi. Kolong tar samnu go ti, siangayil ka lasin, ardibji ta sanchin jawara. Chobjilar gabdi xsimga shkibji noga. Chonsugda mekhunga sawa mazupar
탐지 고 땀린디니 신치 고 땀리 문제와 나치 실아르 알갑디가 공부 삼학 시와 동실거 간남고담 스타그룸 초르지거 스탐즈 나슨 사드그라 이드 안녀먹 담지 고거 슈그진 삼지 그 손이 아드진 동치 슈근짐라 크스모니 조사라 카사메프르 지디 아드진 코르츠그 뉴와 탐지고 찌그나치니 진드인 메프르지리 알리다우크 레어 치르치바 콴두 가진 산치니지 흐틸고시니 산지악토르 흐템즈르 쩨크르그도르지니 아렌치니 몽흐테르딜랑 디 카프사 아롱랑가 탐스 아르지앙컴 탐치고 차와하니 치르고시가 제리 아다 흐스므라 시그마 몽고니 스카테 콴나타 헤위 콴탁 쫄릭쇼 누카테 콴로 어딥지거 콴르 지크자니 어득치 함바지 오타 야라지니 상신다가 다플라근드나 따티라 크서크 파타리지 콜론신 탐치구나나 터니모르딜그리지 냠탕 물무숑을 그글런다 니르 치우 담부 그타장이 랭거

0: 당이 공기셔고 누가 어 십실가 남바 살아와 미안한디 지금 살아한디 콘스 못고는 안자야나 찾고는 아 니 고르컴더 저거 못함니 아 너무 그렇게 차려 그 지기 찾으 그래도 당나 아주 랑거 가르클랑 코리안 중앙 찾고는 랑 코르크 딕딱 그거 당 그거 맹글랑 코르크 나나요 제르크 그 그렇게 손이 면포 쳐지 다 좀 로출 환이클랑 라카나 어다 얘긴 뜻은 보지 정도 좀 불랑 코르크 공거 지금 지나 중앙나 공거 잘음 그 십실에 주려는 뭐 니트스 못사까 디 한체 그릭 니와 모인 당나 다 회적나 아주 랑글랑 코르크 시엠난다 양나 시가 남반난다 어다 저조에 당노 ओया रंगा सोय ने ओन कुरक दुग जर तंग जिर रंगा ना लंग कुरक जें बाग छि जर तंग ने चिर तंग दान जम जिर क ओ डिंगर दे थुक सोनु जें बो ओ डिंगर कंग रज ना शी यप ना बा त रंगा समझे देले जर जो शी तंग नि मसल ओ अचुन जम जर सोय सोय ने आता थोंगुल माय नु कुर जें बो ओ थोंगुल माय ने डिंगर क छपा जे तंग नु जें बो त यो छ बो त चर तंग ता कोंग छु त लंग कुर नम ग लोय नि छमर लंग कुर ते तालो सुमानि ने नि छमर र ता चर तंग ओ Kongga jiglam sarwa jalam ga shibshiray juuratoga di kurta kirka raghma tabkaz raghma tabkaz yin jigma niga loray suwane shibshir satsi ga shibshiray guni to moorinda rik niwa moor rik sambamu kangrizna ta jamjir donjin chapchan shiongtang yane langkur ka shi nambara shi cikata njir suwano jambu oya donjin chapchan shiongtang no jambu kurta yang o chizigrazitangna kongga jalam ga shibshir jayangna shibshir ka jiglam sarwa nda kurkam nandu raghma tabkanda kongga ngishay nugu rik ndasambu nangma tsinu martu kweta rik jamba yu cilpota kongga achu sheko nugu chu лангкурты конгалан куржинда чем боентана ата чизертан шепширкэ курни джиглам сарвага курни шепширятан дамозгра а дамозгра титапка та та тэнгэ чу шепширкэ курни дамозгэ санжг жуяла цамау гаджинчи
1: вахкэр кадэ хртэгми джимдэ денжи га жожэ ямби дэйон оочи лхэцум джандэр кабэ самба бэви даджэр 习近平借陈琼公布了投票等，勒个连台新写罢等，全内用的。根据陈的个吃的路也下笔过这个乐特写罢，陈的了点子和下娃，南京及北地，七次投票陈琼下批，陈的了见证机，彼此了投票票据栏杆送写起来。昨天我讲这个年轻坑，我给了年轻人点的，我给了农村街收着等。 上次们过空，三八大日节，克拉特个组织也入职批。我来克拉卡德克德个米，真正的电机个学习硬币，而且用我姐，他做么真的个，胳膊三八背起了有币。能顿等，恰真想不起来。这个，大罗呢？刚一成立个这种跟国三比录音吧等，而且起某某某错节，用了么真正的电机个剪得很多人那个等，电机个压根他了泥巴多吧。
2: 真正的东京黄国特勒，天津的真不人没得，当地卡不上个几个别，他是怎么的？那么些不人单看的小别，而且前期都把南京，南当这里边真正的连接和学界，学校那等真个。而你，真是个咱们去的个，等个恰不是接冷学堂听个把等个，学校不是的同乡，学校来那的什么？此处我不去看个，而且是接前期单吧。所谓牛把三木等等这个看。
1: 一个人这东里一个那么容，是吗？人这就看待了，接触了这个熟悉人的，说明这个烂尾巴有比说明不得的呢。不是，咱们去的位地错了，你是东年的这个里，这大生病才年几年里，你是东年的这个里，而大几几个比才九十年间，我们的咱们去年的，啊，下个南城，俺当不这个，下个拉咱们去了横一等。
2: 阿哥是东安阿姨呢，阿尼巴阿尼，下个拉阿姐不是来横一等，阿哥是东什么人呢？嗯，什么什么，下个拉阿姐不是来横一等，阿哥是东阿尼人呢？怕他凶是咱们去追有了，下个拉阿姐不是来横一个有了。这，同辈阿咱们同的兄弟，怕他凶是咱们去得个，从我们那沃克拉农村去。 这些人都是在南顿街、藏库里、藏本地、南米、林村等街镇东西发动的。从我们的沃克拉农村等，俺们多年村街、根村呢，就是当当国际人了。我们这个拉，下个他们肯谈起来，工作当个东西是的。

यार से दिन ची संगलां जी देना तारी के लिए संदर्भ जी तो जो यंग तिचुल मंपुष के में कतना जिंतरंग आती लम्हा परो डोमारा कंसा कमोनी के लंबी साशंतों मंडी सांडी रेस को नोगर दर्क न्यामुं दी ठोनी पाचना बिगुंज को जो यल तेरंग के लिए संदर्भ सोंडू पातं सोंडिंगां क्रपा सेरों टाशी तं ताकलपा शिगु चचुप ताकलपा अंतर सेरों तं सोंड मरिंची नियन कब जीमी लेसन आचो यंग चंजुं थरटाशी दिलक्ष